0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: कूल किंग
4: बॉस की डिमांड ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: AGS ट्यूबुलर बैटरी। दिल को है आराम एंड

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज़ कैश है ना.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: MCB बैंक फॉर लाइफ.
5: मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या हो का
6: चलेगी नहीं दौड़ेगी.
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
4: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ.
8: And हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: एंड
9: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.

0: सहूलियत दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
2: कूल किंग,
3: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना ना भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या हो कार,
9: चलेगी नहीं दौड़ेगी,
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: एंड MCB बैंक for life.
12: And hire kar naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost no worries.
13: And hire T3 AC expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
3: Motorcycle, Tractor, ya hoka
4: Chalegi nahi, daudegi
1: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
5: MCB Bank for life
0: And
6: Hire Kanaya No frost IoT refrigerator Twin inverter technology Jisse mile maximum cooling Aur energy saving No frost, no worries
0: And
7: Hire T3 AC expert Extreme T3 inverter For extreme heat Hire

0: station for maximum music.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
3: सोशल मीडिया सार्फीन, खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होका
6: चलेगी नहीं दौड़ेगी. फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
7: एंड MCB बैंक for life.
8: And Aji Fire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
9: And
10: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
9: And
11: Hire T3 AC expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire

0: चुगले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: कूल किंग।
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या हो का,
9: चलेगी नहीं दौड़ेगी।
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
12: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
13: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: हाय फ्रेंड्स, आई एम विकास ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: This program is brought to you by
4: Motorcycle Tractor Yaho Ka
5: Chalegi Nahi Daudegi
6: Phoenix Laga Aur Bhul Ja Phoenix Laga Aur Bhul Ja
7: And
8: MCB Bank For Life
7: And
9: Aji Hire Mini LED TV Line Aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye
7: And
10: Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
7: And
11: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter For Extreme Heat Hire

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: And
1: MCB, Bank for Life.
0: And
2: Aji, Fire Mini LED TV Line. Or Stadium ka mahol, ghar mein banaye.
0: And
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: एंड
4: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
5: इट्स 10 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
6: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: आज ही फायर मिनी LED TV लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
0: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
0: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
2: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
0: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333-555-0011।
6: This program is brought to you by
7: Aji Hire Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100.
3: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है. क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

0: This is a produced radio promo.
1: With special effects devised to get your attention.
0: This is where I can tell you what you can win.
1: I'll say it again with effect.
0: What you can win.
1: Now I speed up to emphasize how important it is.
0: A massive big prize followed by another big prize and an opportunity to win the overall prize.
2: The overall prize.
1: The overall prize allows you and somebody you know to do something amazing.
0: Thanks to this radio station.
3: This radio station.
0: Big bang to finish the whole thing off.
4: 100 FM.
5: This program was brought to you by
6: Aji Hire Mini LED TV Line or Stadium ka mahol ghar mein banaye.
5: It's 11 AM. This time check is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: Your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं। इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फ़ालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना सीएनआईसी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
3: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: कुकिंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
3: सिवान स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: The real station for real people. 100 FM.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: MCB बैंक फॉर लाइफ
5: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
6: And
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
6: एंड
8: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
9: FM 100 100 100 100 100

0: FM
1: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
2: अज़ाने ज़ोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ोहर का वक्त हो गया है।

0: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
1: कूल किंग, चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: MCB बैंक फॉर लाइफ
2: एंड
3: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
2: And
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: And
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: FM 100.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
3: आज ही फायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
2: And
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: And
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
3: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
4: And हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: And हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: 100.1 FM, your location for maximum music.
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.
6: कूल किंग.
7: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम. इसी बात, लेकिन बीपी हाई.
8: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
9: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं. हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा. आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011.
0: This program is brought to you by
10: MCB Bank for Life
0: and
11: Aji Hire Mini LED TV Line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: And
12: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
13: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
2: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए
3: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर।

0: हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
1: एंड
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: एंड
3: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: This program was brought to you by MCB Bank for Life and
1: Aji Hire Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
0: एंड
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: एंड
3: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे।

0: कुकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, ना तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। सूरह अनफाल।
1: FM 100।

0: FM 100 MCB 1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में जैसे कि फ्री चेकबुक फ्री बैंकर्स चेक फ्री SMS अलर्ट्स फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं MCB बैंक फॉर लाइफ
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय AGS ट्यूबुलर बैटरी। दिल को है आराम एंड
5: तूफान है
0: And MCB Bank for Life and
6: Aji Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
7: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई धमकी लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।
8: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
6: आज ही हायर मिनी LED TV लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।

0: मुकाबले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: MCB 1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: MCB बैंक फॉर लाइफ
3: एंड
4: आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।

0: This program was brought to you by
1: MCB Bank for Life.
0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: MCB 1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: कूल किंग,
6: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: This program is brought to you by
7: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
0: एंड
8: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
0: And
9: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.

0: मुकाबले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: MCB 1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
6: This program is brought to you by
7: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
8: And Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
3: कूल किंग.
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: This program was brought to you by and
1: Tufan hai har jeet ki pehchan hai
0: and
2: aaj hi Hire Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi JazzCash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. JazzCash hai na.
5: Cool King.
6: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
0: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
0: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
2: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
0: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333-555-0011।
8: Turn it up! Nobody can controls me. I am uncontrollable. The only thing that can control me.
9: Turn it up!
8: His music, FM 100.

0: location for maximum music.
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Cool King.
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा.
7: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
8: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
9: Be ready for a great journey
10: with Melodious Companion.

0: 100.1 FM, your location for maximum music.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रास्त 0333-555-0011।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। No Frost, No Worries.

0: 101FM, your location for maximum music.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: FM
1: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
2: अजाने इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहा मान लिया। तो आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। सूरह इब्राहिम।
2: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: Backyard.
1: FM
2: 100. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
3: This program is brought to you by
4: Hire Kannaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost, no worries.
5: Keep go yakety yak the street and waste your time of day.
6: They're talking.
7: You talking to me?
6: We're rocking.
7: This is all music, period.
6: And it's only on
8: Fabulous 100 FM.
9: Broadcasting nationwide, coast to coast.

0: Have a nice drive with FM 100.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries. Sir.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower through the airwaves into your stereo
5: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Higher Kannaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving No Frost No Worries

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर अभी Jazz Cash डाउनलोड करो पाओ इंस्टेंट लोड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस वो भी बिना किसी रिटेलर के आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए Jazz Cash है ना
3: वीराने है नबी का मदीना तेरे बगैर
4: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशरियात FM 100 पर

0: The voice of the nation. FM 100. 24 hours a day.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.

0: एस ट्यूबलाइट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलाइट बैटरी, दिल को है आराम।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: music is on.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।